वन डे माता पार्वती सैद टू शिव जी, यू आर गॉड ऑफ गॉड, बट एवरी टाइम यू आर मेडिटेटिंग, हु इज योर गॉड? शिव जी सैद, माई गॉड इज माई गुरु.

0: पूज्य पाद अनंत शिव भूषित परिभज काचार ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्री श्री श्री 1008 विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंद जी पुरी जी गुरुदेव की जय।
1: देवपुरी समादेव
0: की जय।
1: माधवानंद जी भगवान
0: की जय।
1: दीप नारायण भगवान
0: की जय।
1: अलकपुरी जी महादेव
0: की जय।
1: भारत माता की
0: जय।
1: जय।

भूचरा हर की आत्मा। श्री दीप नारायण भगवान शिवानंद जी महाराज की, अलकपुरी जी महादेव, देवादिदेव देवेश्वर महादेव की।

आता है, आपको आरोग्य प्राप्त हो जाता है। तो उस दिन से तुलसी और शिव जी साथ में रहने लगे। जय बोलिए विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय। सो वी गोइंग टू चैंट नारायण। कृष्ण भगवान के क्या है, कृष्ण भगवान के आशीर्वाद से, कृष्ण कवच से, वजह से ये युद्ध में शंखचूड़ दानव नहीं हारा था। अब क्या है, शंखचूड़ दानव हर गया और कृष्ण कवच विष्णु के पास में रह गया। कृष्ण इतने शक्तिशाली पहले भी थे, अभी भी है, और कवच शक्तिशाली है। तो कृष्ण भगवान को जय बोलो। जय बोले कृष्ण भगवान की जय। श्री

0: In Swastani Puran, it says like, so Tulasi's origination, it talks about Tulasi. There is the story is different, but the nature is same. There was a Danava, demons, and his name is Jalandhar. So Jalandhar was a brave, brave demon. And Jalandhar's wife is Brinda. And Brinda was also a beautiful woman. He is also maintaining Pati Dharma, Pati Vrata. So Pati Vrata or Pati Dharma. So for man, this is Ek Nari Brahmachari. So we were married, he's also Brahmachari, but with only one woman. So woman also, she's also Brahmacharini, just for one husband. So that is, so which is very powerful, as we mentioned before. So Brinda also maintaining that Brahmacharini. And also Jalandhar was also, there was a very brave. But he was the demon, he always saw the demon nature. He used to go God's place, houses, and destroy the temples, and he is torturing the Mahatma, Rishi Munis, and doing so many unjust things, violence. So there was, the time was a little bit difficult. And everyone went to Sivaji, and Sivaji told that, well, I cannot do anything now, just you need to go and ask to the Vishnu. Because I gave the blessing to him, and he is the devotee of Shiva. So there is the problems. So that's why what happened is he need to go and worship. So Vishnu, they went, everyone went to Vishnu. And Vishnu says that, well, I cannot help you. Only Mahadeva can kill the Jalandhar. Without Mahadeva, no one kill. But I can help you one thing. That is, he has got the Patni Vrata Dharma. So without destroying the Patni Vrata Dharma, without destroying the strength of the truth and the confidence and the spirituality of wife, I cannot do anything. And he, the Vishnu, when Vishnu told that, then everyone, the goddess, went to the Mahadeva. Oh, the Mahadeva, please help us. Vishnu going to help to destroy the Patni Vrata Dharma, Pati Vrata Dharma, both of them. So Vishnu accept and Shiva also accept. They're ready. And Shiva invited in the battlefield to the Jalandhar. And Jalandhar went to fight. And they are starting fighting. And started fighting. And hundreds and thousands years that passed away. So but Jalandhar was so brave. Still, he did not defeat it. So ye Puran hai ki Shiva Puran mein jo aata hai ki Tulasi Mata Saligram mein kaisa pyari ho gayi. तो वही है कि वो शंखचूड़ की पत्नी थी और विष्णु ने छल करके उसको अपने बनाया, उसका पत्नी धर्म नष्ट हो गया और उसने श्राप दे दिया। श्राप देने के बाद में विष्णु भगवान क्या है कि पाषाण बन गए, पाषाण विष्णु क्या है कि वो शालिग्राम में रहने लगे और शालिग्राम में रहने लगे और तुलसी माता भी उनके पास में रहने लगी, वैकुंठ में चली गई। इसलिए आज तक हम क्या तुलसी इस्तेमाल करते हैं, ये शिव पुराण का कहानी है। शिव पुराण का अमृत कथा ये बोलता है कि ये तुलसी ने जो शरीर देह त्याग किया था वो गंडकी था। गंडकी अभी नेपाल के मुक्तिनाथ क्षेत्र से बहती है, शालिग्राम वही मिलता है। दुनिया में एक ही जगह है कि असली शालिग्राम मिलने का जगह। तो हम जाके खुद अपने जीवन में परीक्षण कर सकते हैं। कोई बनी बनाओ बात नहीं, कोई ये कहने वाला कथा नहीं है कि ये शिव पुराण में जो लिखा है वही अभी भी सत्चित सत्य को हम क्या है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसीलिए शिव पुराण में ये लिखा है, तो दूसरा पुराण में क्या लिखा है इसके बारे में। तो हम तो क्या है कि अभी आधुनिक दुनिया में हर चीज को परीक्षण करके ही लोग क्या है कि समझते हैं, विश्वास में लेते हैं। तो स्वस्थानी में, स्वस्थानी पुराण में क्या लिखा है कि वहां पे भी ऐसी कहा कथा है, जालंधर नाम का दानव था बहुत बड़ा, वो क्या करता था, संसार को दुख देता था और देवता को बहुत दुख देता था। ऋषि मुनि महात्मा शिवालय सार को क्या था, वो तांडव करता था उसमें। तो इसीलिए सब लोग क्या हो गए, बहुत दुखी बन गए। और उसके बाद में ब्रह्मा विष्णु महेश का क्या है बैठक हो गया, और बैठक के बाद में उन्होंने क्या किया कि जालंधर के पास में तो पत्नी व्रता धर्म है, पति व्रता धर्म है, जब तक वृंदा के पति व्रता धर्म नष्ट नहीं हो जाएगा तब तक ये बहुत बहादुर रहेगा, बहुत सामर्थ्यशाल रहेगा, इसीलिए विष्णु के साथ में जाओ, शिव जी ने बताया। और सारे देवगण विष्णु के पास में गए, विष्णु ने हाँ कह दिया। उसके बाद भी फिर विष्णु ने छल करने के लिए गया। जय बोले विष्णु भगवान की जय। सो एंड देन विष्णु स्टार्टेड टू डिस्गाइज अगेन, दैट इन स्वस्थानी पुराण इट सेज लाइक एंड विष्णु चेंज हिज अपीयरेंस एंड ही looks like exactly the Jalandhar, and he went. And when the time the Brinda saw the Vishnu, Vishnu became, what happened, you know, he faint, he lost there. She was so beautiful, and that sort of beauty the Vishnu that did not tolerate, and he faint there. And Brinda surprised, who is this? If this is my husband, he cannot be faint. He should not be unconscious. My husband is used to. And then before coming Brinda, before saying to Brinda, Vishnu disappeared and ran away from there. So, and he was waiting for the second chance. And second chance, then after a long practice, he practiced and he gathered courage and he went to the Brinda's house. And with bravely, oh Brinda, I just arrived. I'm very tired with the Mahadev fight. Can you please give me some food, snacks, coffee, tea, whatever he wanted? So he ordered, he asked Brinda. And Brinda said, well, my Swami, come here. I'll offer you my lord. I'm waiting for you. You must be tired. I'll give some good massage. Come here. And she gave good fruits and everything. And she did the arati for her husband. And everything done. And that Vishnu did his notorious things, he performs that. And the Brinda, overnight, Brinda finishes her Pativrata Dharma, finishes. And Jalandhar was fighting over there with Mahadev, and Vishnu is in Ras Lila with Brinda, in the Jalandhar's disguise appearance. And in the morning time, again the Vishnu sent message or information to Shiva. Oh, the Shiva, now the project is done, then you can fight. So, and then Mahadev started to fight. The Danav became very weak and he fell on the earth and died there. And the sound came, the big sound, massive sound came, and that went to the Parvati's, that went to the Brinda's house. And that was his pati. And she saw his husband is dying there and Vishnu is acting there as her husband. So that time she is very unhappy and she started to curse. But the Swastani Puran said that she cursed four cursing. There is not only one. She Puran says that only she, the Vishnu need to remain as like the Pasar, the stone. But there it says like the in Swastani Puran says she cursed four things. Oh Vishnu, you are the strong hearted. You don't have any kindness. That's why better you remain as like a stone and go and stay in Kali Gandaki in Nepal. So Vishnu accept that as a Kali Gandavi Saligram. And also the Brinda curse, you are like the tree, like you didn't move. So that's why you need to remain, you're supposed to remain as a tree in the earth so that you cannot move anywhere else because you disguise and tree cannot move. So that's why I curse you. You better remain as a tree. तो फिर उसके बाद में जब ब्रिंदा को श्राप से क्या हो गया कि स्वस्तानी पुराण में ब्रिंदा ने चार श्राप दे दिया. शिव पुराण में जो जो बात है वही है, लेकिन स्वस्तानी पुराण में जब ब्रिंदा का जो पतिव्रता धर्म विष्णु ने नष्ट कर दिया उसके बाद में ब्रिंदा ने चार श्राप दे दिया. पहला श्राप था कि ये विष्णु छलकारी तो जाके पत्थर बन के रहना, तो पत्थर बन के रहना पड़े तो उस साइम से पत्थर सालिग्राम के रूप में रहे. फिर दूसरा साफ था तेरे को पेड़ बन के रहना पड़े, तो पेड़ बन के रहना पड़े का मतलब कि पीपल बन गए विष्णु जी. और दूसरा तीसरा श्राप था कि आप ग्रास बन के बनना पड़े, तो इसलिए कुश ग्रास भी तुलसी, कुश ग्रास भी विष्णु का रूप है, कुश ग्रास बन के बन गए. और ऐसा करके उसने श्राप दिया आप कि झाड़ होकर रहना पड़े, घास होकर रहना पड़े, तो तुलसी बन गए. इसलिए चार श्राप था. तो वृंदा के श्राप से विष्णु भगवान श्राप मोक्ष के लिए पहले से अभी तक को मोक्षता के लिए रहे हैं. तो वृंदा कर्स तो विष्णु फोर कर्सिंग्स देयर. फर्स्ट थिंग इज बेटर यू रिमेन अ स्टोन, एंड देन सेकेंड ट्री, एंड थर्ड वन इज ग्रास. सो दैट्स व्हाई ग्रास द यू नो द ग्रास इज कुश ग्रास. द ग्रास कुश ग्रास इज ऑल्सो टेकन एज अ विष्णुज इनकार्नेशन, एंड दैट्स व्हाई इन प्रेयर everywhere we use the kush grass. As we mentioned earlier session is kush grass is also medicinally, is therapeutically very useful and very wonderful herbs. And similarly she calls the grass bush. The bush is tulasi. Tulasi hokar rana pade, kush hokar rana pade, और पीपल रुख होना पड़े, इसलिए इस दुनिया में पीपल को, तुलसी को, शालिग्राम को, और क्या है कि हम जो पीपल को रुख, शालिग्राम को, तुलसी को, कुशग्रास को विष्णु के रूप पे इस्तेमाल करते हैं। ये आयुर्वेद के हिसाब से, स्वास्थ्य के हिसाब से अच्छा है, आपको बीमार ठीक कर देता है। और तुलसी खाना में डाल के खाए, आपको बात रोग ठीक हो जाता है। तुलसी घर में रखे, आपको चट्यांग नहीं आता है आकाश से, और कोई भी बिस्मत नहीं आता है, और भूत प्रेत पिशाच नहीं आता है। इसलिए कुशग्रास चाहे जिसी धर्म का इंसान हो तो वो रखे तो उसके लिए लाभ होगा, तुलसी भी ऐसे करके लाभ होगा। सो फ्रॉम दैट डे विष्णु स्टार्टेड टू मोक्ष के लिए आ गए, एंड देन ही स्टार्टेड टू रिमेन तुलसी, पीपल, शालिग्राम एंड कुशग्रास। सो नाउअडेज इफ यू हैव टू प्रे विष्णु, नॉर्मली यू गो टू एंड वर्शिप, एंड इट इज सेइंग विष्णु तुलसी पीपल इज अ इंडिकेटर ऑफ विष्णु। That's why that is the only tree in this universe that gives continuously oxygen. The other tree gives carbon dioxide as well. But people, that continuously. That's why meditation can be successful. The Buddha meditated way under the tree of banyan tree, the people tree. So that's why under the, that is easy. Without food also you can take oxygen. And without water, without food, also you can meditate. So the meditation becomes easier under the tree of the banyan tree. And also according to the astrology, if you have the mangalik, if you have that some difficulties in conjugal life, if you supposed to suffer some difficulties in your conjugal life, and there is a provision, you go and marry with the people. So people is Vishnu, and Vishnu will take the responsibility. And that is the because of the course of the Brinda. That's why any difficulties you have got husband and wife, the negativity will, the burden will carry by the people tree, and you will be free. If you Google that, why people does the banyan tree wedding, that's the mystery. तो इसीलिए क्या है कि वेद पुराण में भी बताया गया है कि पीपल क्या है, सबसे बड़ा, सर्वाधिक लोकप्रिय, जनहितकारी, सर्वकालिक, सर्वदेशीय और सर्वप्रिय वृक्ष है, जो वृक्ष आपको सर्वाधिक ऑक्सीजन प्रदान करता है। दुनिया में सारे पौधे पेड़ क्या करता है कि रात में और दिन में अलग अलग ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, लेकिन पीपल का पेड़ कंटिन्यूसली आपको ऑक्सीजन हवा देता है, जो हवा मानव जीवन के लिए, जीने के लिए अत्यावश्यक जरूरी है। पीपल हैव गॉट द ग्रेट वैल्यू, सो दैट्स व्हाई इन हवन ऑल्सो व्हेन यू डू हवन देयर नीड्स टू बी पीपल्स वुड, people woods, tulsi woods, kushgrass, tulsi wood. So when you death also in symmetry, if your body is symmetry cremate with the wood of the people, kush, tulsi, it says like it will be purified your body, and spiritually you will go in heaven, Sivaloka, Vaikuntha. So that's why in the death time, many people in India, in other places, they collect some wood, little bit tulsi, little bit that panchapallav is. पीपल मरने के समय में क्या है कि थोड़ी सी भी पीपल के पेड़ लकड़ी और तुलसी की लकड़ी साथ में रख लो, और चिता में कोई भी किसी का भी चिता पीपल का लकड़ी से, तुलसी का लकड़ी से, उसमें कुशगास रख के उसको चिता, जो चिता दहन होता है तो वो वैकुंठ लोक जाता है। तो वो तो स्पिरिचुअली है, इफ यू डोंट बिलीव, अगर आपको विश्वास नहीं है तो क्या है कि जहाँ पे पीपल को जो बॉर्न होने से जो हवा आता है तुलसी से और कुश से, उससे वायुमंडल को साफ रख देता है, वो गंध को दूर कर देता है, इसलिए वायुमंडल का कीटाणु नुकसान कर देता है और ओजन लेयर को भी टाल देता है। इसलिए पीपल के ट्री बहुत अच्छा है, हवन के लिए संविदा बना देता है। जय बोलिए पीपल भगवान की जय। सो दिस इज द वंडरफुल स्टोरी दैट यू कैन एक्सपेरिमेंट इवन you go and if you have the measurement of the oxygen that has been done many times in Australia also did. So if you take that level of oxygen near close to the people tree or basil tree, the tulsi ke nazdik jaake check kare, so you will get the high temperature, high level. So that's why always tulsi is beautiful, and then people is beautiful. So it says no matter whatever story is connected, but that is a wonderful gift from this universe, for the universe. So meditating under the banyan tree and bringing the kushgrass in your flower pot and planting the tulsi kushgrass is wonderful. That's why our saint and rishi munis, they ate that every prayer you need to have leaf of the tulasi, leaf of the peepal, and kush grass. That's a compulsory. So we don't. If we don't find, that's okay. But if we have that one, that's a wonderful, perfect prayer. So in the kalasa also, that we put that. If you see that in the kalasa, there is a seven leaf. If we don't find the seven, we'll put the five. So in the five leaf, that is also panchapallav, mango, and peepal, and aak, and chaap. So tulsi, everything goes there. So that's why the leaf is connected with Ayurveda and therapeutically, which is wonderful. And so that's why when this value goes to the Western world, and there is expensive, in you might came from the Japan, in Australia, and some other country, Canada. Nowadays, the gardener, they are growing the peepal tree, banyan tree, and which is very expensive tree. It takes 1,000 to 2,000 for one plant. So what a valuable now, isn't it? So better you can go and darshan here. You are in India. While you are in India, you can see and feel the tree, the peepal tree. Jai boliye Narayan Bhagwan ki jai. इसीलिए पीपल के रुख में ध्यान करने से, पीपल के रुख के नीचे बैठ के ध्यान करने से श्वास प्रश्वासन में आश्वासन तो यही है. और पीपल के क्या है, पीपल में ब्रह्मा विष्णु महेश का भी वास है. इसीलिए पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध भगवान जो नेपाल में जन्म हुआ था उनका, उनकी उन्होंने भी ध्यान किया. ध्यानस्थ करके उसी बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्ञा प्राप्ति किया. कब प्राप्त किया, वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन में. वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन में जन्म, वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन में महानिर्माण, और वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन में ज्ञान प्राप्ति होने वाला ऋषि मुनि वही थे कि जो नेपाल के गौतम बुद्ध जो बोध गया में आए, आकर मेडिटेशन किया था. तो ऐसे करके रामतीर्थ स्वामी भी वही पूर्णिमा के दिन में उनको जन्म हुआ था, पूर्णिमा के दिन में ही उनका मृत्यु हुआ था. इसलिए कि वैशाख पूर्णिमा वैसे भी अस्पिश से, उसमें भी जो पीपल के वृक्ष के नीचे आप कोई भी काम करे तो होता है. इसीलिए फिर दूसरा चीज है, जब भी शनि संकटा का जो आपको समस्या है, तो ज्योतिष विज्ञान भी वही आपको शिकायत करता है कि शनिवार के दिन में जाके पीपल के पेड़ में पानी गिराओ. तो पानी के कमी होने से वो आपको धर्म नहीं होता है, ऐसा नहीं है. जब आप सुबह पीपल शनिवार के दिन में पीपल के वृक्ष के नीचे जाएंगे तो आपको सारा नेगेटिविटी हो, स्ट्रेस हो, और जो प्लैनेट से आया हुआ कोई भी नेगेटिव वाइब हो दूर हो जाता है, और आपको अच्छे ऑक्सीजन मिल जाता है. इसीलिए आपको ग्रह पीड़ा से आप मुक्त हो जाते हैं. जय बोलिए पीपल भगवान की. सो इट इज सेइंग दैट इन एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो, इफ यू आर सफरिंग सम प्लैनेटरी दैट इल इफेक्ट, then you can go under the banyan tree on Saturday and offer water. It is saying that the remedy, one of the remedy of the Saturn planets to remove to graha pida. So why it is fruitful? Because when you go on Saturday, that Saturday morning, it is saying there is the God is residing in the trees, on the branches. If you don't believe, if you don't want to believe, that's fine. But still you will get the same benefit, that the oxygen will come there early in the morning. The great oxygen of the peoples. And also, if you pour the water, that's good. You are giving the watering the plant. And that's also dharma, obviously. And definitely you will be protected. So that's why the everything is and everything that has got science, and it is practicing nowadays heavily and widely. Jai boliye people Bhagwan ki.
1: Jai.
0: Now we'll have one bhajan. And we'll go continuously. We have got, we finished many chapters today, so which is important also. We'll not have time, some other time, to read in detail. There is a long verses, and also it need to be, I'm trying to translate instantly all the Sanskrit slokas and these verses. Okay, so we'll go for bhajans. Hari Om.
2: भगवान की जय. श्री दीप नारायण भगवान की जय. श्री श्रीदेव पुरुष महादेव की जय. श्री माधव कृष्ण भगवान की
0: जय.
2: विष्णु गुरु महामंडलेश्वर परम श्री स्वामी महेश्वर.

0: Bombole, Sri Sri Dipnaram, Bhagwane Kije, Sri Sri Deva Purisha Mahadeva Kije, Sri Sri Madhav Krishna Bhagwane Kije, Vishwa Guru Mahamandaleshwar Paramhansri Swami Maheshwarananji Guru Deva Kije.
1: Jai Bole Bhoye Baba Ki. So in Shiva Puran, whatever talks, the Sustani Puran also the same thing as I mentioned before. It teaches us how we can remain all the time in a deep spiritual value. The life is very short and we came in this universe that for a short life. So it is saying that in sky, whatever light gives by the star, that much wide place it can see. That's why in our life also, whatever divine divinity or purity we can maintain, that much purity we can carry with us. So every stories, every philosophy, every that the information teaches us these things here. So that's why whatever you mean, the change your vision, visuality, to see Bhapuran, हमारे लिए और सारे वेदादि वेद क्या करता है कि हमारे लिए जीवन कैसा सरल बनाना है और शिव जी की तरह कैसा रहना है. और शिव जी ने बोला है कि मैं कल्प कल्प में आवश्यकता के अनुसार कभी ब्रह्मा बन के, कभी विष्णु बन के और कभी शिव बन के मैं क्या है कि संसार को चलाता हूँ. तो कभी कभी मेरा भूमिका रहता है ब्रह्मा का, कभी विष्णु का, कभी क्या है तो कभी रहता है शिव का. इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई विभेद नहीं है और शिव से विष्णु बड़ा, विष्णु से ये बड़ा वो हो ही नहीं सकता. ब्रह्म एक ही है. तो इसलिए ब्रह्म एक है. तो सबसे बड़ा शैव कौन है कि नारायण है, सबसे बड़ा वैष्णव कौन है कि फिर शिव जी है. वो तो हमने बारंबार बोलते ही आया है. सारे शास्त्रों, ऋषि मुनि, संतगण, महात्मा सारे समय समय में उपदेश देते आया है इसके लिए. फिर भी जब संदेह रहता है तो संदेह क्या है कि इस कार्य बिगाड़ देता है. संदेह ही क्या है कि धर्म का नुकसान करने वाला है. तो इसलिए संशय आत्म विनश्यति ही. तो किसने बोला है? तो भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने बोला है कि तो संशय करोगे तो उसमें क्या होता है कि आत्म द्रविड़ हो जाता है, मन बिगड़ जाता है. सो व्हाट एवर यू फॉलो ट्रस्ट, व्हेन यू ट्रस्ट देन डेफिनेटली इट विल हेल्पफुल फॉर यू. इट इज सेइंग दैट we always celebrate Hanuman Jayanti, isn't it? So Hanuman is a bhakta of Rama. We always celebrate Hanuman Jayanti. But in similarly, Arjun also the very close friends and bhakta also the Krishna. So why we cannot celebrate Arjun Jayanti? Because Hanuman is a devoted person. He never doubt. He never doubt. So he always respect and honor. There was no doubt for him. God exists or not. There is always he believe and trust. So that's why we celebrate the devotion of Hanuman. That's why we call Hanuman Jayanti. But do we celebrate Arjun Jayanti? No. Because Arjun also devotee. But he always doubt. He's asking, oh, what will happen? Oh, the Lord Krishna, I cannot fight. Oh, the Lord Krishna, you said meditate. But how can we meditate? And you said one time that go and marry and remain in a dharmacharya. This is a confusion. So I mean confused. So, and that's a continuously sarva dharman parityajya mamikam saranam braja. So Bhagavad Gita chapter 18 verses 66. Sarva dharman parityajya mamikam saranam braja. Aham tvam sarva pape bhyo moksha ishyami maha sujaha. So Bhagavad Gita ke 18 अध्याय के 66 श्लोक में जो लिखा है वो भी क्या है कि सर्वधर्मान, मतलब कि कोई भी चीज आपका जो दानवीय चीज है, कोई भी असुर तत्व है, सबको छोड़ के एक निर्वृत्त होकर मानवीय धर्म, ब्रह्म धर्म में निर्लिप्त हो जाइए तो उसमें क्या है कि आपको बहुत से मुक्ति मिल जाएगा. इफ यू सरेंडर दैट चैप्टर 18 वर्सेस 66 भागवत गीता सेज इफ यू सरेंडर विदाउट एनी डाउट definitely you will go, you will cross the river. If you doubt, then it will not be. That's why it is saying that it increases faith also. And for the faith, many stories comes, many things comes. So that's why there is theories. One is, you remain happily without doing material gain, with balancing material gain, or it's like a charvak siddhanta, the charvak theory. The charvak theory says like, yavat jivet sukham jivet, rinam krivet, gritam pivet, vastri bhutasya dehasya punaragaman kutaha. That means, yavat jivet sukham jivet. As long as you live, live happily. Enjoy, drink, dance, and no matter you have debt or not, then effort ghee. Ghee means like nectar. Enjoy your life. But that Charvak's theory is that said. But in spirituality, it says like, there is a great nectar. If you have the addiction of divine, you don't need to enjoy for wine. So in you can enjoy with divine. The divinity, spirituality is really good. So that's why it says like, trust and follow the Shiva Purans. It says like from Rudra Samhita to this, we can summarize, when we summarize that, the Tulasi's devotions and how can it helps this society to unite husband and wife, society and family to family. This is the one of the wonderful story. And secondly, we can learn this one, great devotion, deep devotion without any doubt. Where is doubt, cut it out and continuously you follow. And later on, finally, it is saying that the Brahma is Vishnu and Mahesh, the Trigona, proton, neutron, and electron. They merge together whenever it necessary. And no matter whatever powerful demon, whatever the power you have got, one day that will be cessation. So that's why, that's the story from the Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, to now it's a discontinue. This is the wonderful story we studied in Rudra Samhita. And almost we finished 43 chapters of this Rupta Samhita Panchama Yuddha Khanda, which is wonderful. And I think today we need to conclude this one. So, askeli aaj humne kya sun liya ki Rudra Samhita mein pehle se abhi tak kya hua ki Parvati ji ka devotion to humne sun liya tha. Aise karke Jalandhar. जालंधर को कैसा विष्णु भगवान ने परास्त करने के लिए वृंदा को सतीत्व हरण करना पड़ा, और सतीत्व हरण करने के बाद में उनका पति धर्म नष्ट हो गया. पति धर्म नष्ट होने के वजह से क्या है कि जालंधर दानव मर गया. इसलिए पति बीच पत्नी बीच के जो धर्म होता है वो बहुत शक्तिशाली रहता है. आप कहीं भी रहो, जैसा भी रहो, कि शंखचूड दानव के लिए भी कौन थी बलवान, तुलसी का व्रत था. तो ऐसे करके फिर शिव जी के लिए पार्वती थी, और विष्णु भगवान के लिए लक्ष्मी, जालंधर के लिए वृंदा. जब तक उनको पतिव्रता धर्म रहा था तो सदा वो अमर रहे. इसलिए आज के सोसाइटी में, समाज में तुलसी का महत्व तो क्या है, आयुर्वेद के हिसाब से पीपल के महत्व तो के बारे में आज चर्चा किया है शिव पुराण के. अब इस समय में हमको साराम समय प्रस्तुत करने का समय आ गया. तो कल हमारे लिए बहुत अच्छा ऐसे ही प्रसंग आ जाएगा. आप लोग जरूर से आना सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक, और शाम को चार बजे से लेकर छः बजे तक ये शिवपुराण महात्म्य हो जाता है. ये महात्म्य तीर्थ स्थान में बैठकर श्रवण करने का इसका महत्व तो अलग रहता है. आप कहीं भी हो तो इसके लिए आप क्या है कि याचना करके आ जाइए. शरीर मन तो पवित्र हो जाता है, जन्म जन्म के पाप भी दूर हो जाता है. तो इसीलिए तो शिव भगवान का दृष्टि उनके पवित्र सौर शब्द से हम इस्तेमाल करते रहे, जुड़ते रहे. जय बलिए सत्य सनातन धर्म की जय.

देव नारायण भगवान की, देवेश्वर महादेव, अलकपुरी जी महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवन जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म। ओम शांति शांति शांति।

श्री श्री देव पुरुषा महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान अलकपुरी जी सिद्ध पीठ की सत्य सनातन धर्म। ओम शांति शांति शांति।

0: नारायण हम सब दास प्रभु शरण परायणम सिक्स सो
1: शेष्टिकरात
0: कंटिन्यू
1: अपोकरा
0: फाइव टाइम्स मोर
1: ऐसे पेचकरात

0: Pancamante aero da sotto.
1: It's there. आप अब त्रबा त्रबा दीप प्रज्वलन
0: आज आजमन प्राणायाम
1: ओके वी आर स्टार्टिंग श्रीदीप नारायण की जय पहले आजमन या पवित्र पवित्र
0: जय आजमन ओम केशवाय नमः ओम केशव माम पुरातु ओम नारायणाय नमः नारायणं माम पुरातु ओम माधवाय नमः माधवं माम पुरातु हस्तो वृक्षारिषे केशवाय गोविंदाय नमो नमः अग्निज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्य स्वाहा अग्निवचो ज्योतिवर्च स्वाहा सूर्यो वचो ज्योतिवर्च सूर्य स्वाहा भगवान को दीपक
1: दिखाकर सब हो गया
0: ले लीजिए आसन वगैरह हो गया उसी आसन से तो यहाँ आवश्यकता नहीं अभी पूजन से उठ के आया हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के अग्नि देवता का आवाहन करना मतलब प्रणाम करना है ओम अग्निदूतं पुरोदधे हव्यवाहम् उपप्रवेदेवाम् आसादयादिया भूर्भुवस्वः अग्नये नमः ध्यानं देहरार्थे पुष्पम् अक्षतां च समर्पयामि नमस्करोमि कुंड के बाहर ही इसको चढ़ाई बीच वाली जो सीढ़ी है भूर्भुवस्वः अग्नये नमः ध्यानं देहरार्थे अक्षतां पुष्पम् समर्पयामि नमस्करोमि थोड़ा सा जल से अभिसिंचन कर दीजिए कुंड के अंदर थोड़ा सा जल से जो ये लोग बैठे हुए इन सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा जल और जो पूजन की जो सामग्री है इसमें थोड़ा थोड़ा जल पुष्प से लेकर के सभी जगह चढ़ा दीजिए आप मुखम्या सर्वदेवानां हविभुक्त विभुक्त तथा पितृणां च नमस्तस्मै विष्णवे पावकात्मने इस श्लोक में बताया गया है कि अग्नि देवता कैसे हैं चत्वारि श्रृंगा उनके जो अग्नि देव हैं उसमें उनके चार सिंह हैं त्रयो अस्य पादा उनके तीन पैर
1: हैं इट इज सेड इन द शास्त्रस दैट ही हैज चार क्या है
0: पैर चार सिंह हैं उनके
1: सिंह या सिर
0: String, sir.
1: For not string, it's a Sanskrit word for heads. So it is said in this mantra that fire god has four heads.
0: Trayo asya pada, teen pair hain unke.
1: Three legs.
0: Dve shirse, do jo hain unke sar hain.
1: To char kya the pehle?
0: Sting nahi hote hain, sting.
1: Okay, four horns, three. Legs and two heads.
0: सात हाथ हैं उनके.
1: Seven hands.
0: और सात ही जिह्वाएं हैं.
1: And seven tongues.
0: जिससे वो हवन ग्रहण करते हैं.
1: With which he receives what we offer him.
0: वो महादेव के बहुत ही ज़्यादा अदंत प्रिय हैं.
1: And he is very loved by Mahadev, Shivji.
0: ऐसे जो अग्निदेव हैं उनको हम प्रणाम करते हैं
1: एंड टू दैट अग्निदेव टू दैट फायर लॉर्ड वी मेक प्रणाम
0: और वो हमारे जो हम भी हवन कर रहे हैं तो उसमें जो गलतियां हुई हो गलतियां हो उन्हें क्षमा कर हमें हम जो भी प्राप्त हुई जो हमारी वस्तुएं हैं उनको स्वीकार करें
1: एंड
0: हमें हमारे कर्तव्य पालन में मार्गदर्शन दें
1: वी आर प्रेइंग टू अग्निदेव टू फायर लॉर्ड दैट व्हाटएवर mistakes in chanting or in offering we will do in this yagya we're asking for forgiveness and whatever we can with our shakti bhakti vairagya whatever we are offering please accept it and fulfill all our wishes which we asked you for
0: jo panch tatva hain un panch tatvon se hum sari cheeze le rahe hain jaise vayu hai to vayu se hum saans le rahe hain jal se
1: all the five tatvas we are taking something from the air wind we are taking breathing from water we are drinking water
0: to jo panch tatva hain un sabhi panch tatvon ko pranam karke un sabhi ko ye nivedit hai
1: and whatever we are offering we are also offering them
0: aage prarambh karte hain hawan ki prakriya थोड़ा सा पुष्प और अक्षत लेकर के ध्यान करना है नवग्रह जो देवता है
1: वी आर डूइंग ध्याना वी आर मेडिटेटिंग टू ऑल द नाइन ग्रह नाइन प्लैनेट्स
0: प्लैनेट्स
1: back and let it be. Later we'll clean up the mess.
0: क्योंकि भगवान के दो पुत्र हैं धर्म और अधर्म भगवान के धर्म सामने तरफ रहते हैं और अधर्म पीछे रहते हैं
1: There are two sons of God. One is dharma and one is adharma. Dharma is in front and adharma is in the back.
0: तो दोनों को आहुति मिलती है जो अग्नि के अंदर जो आहुति जाती है वो धर्म लेते हैं और अधर्म को जो पुण्य के बाहर जाती है वो अधर्म
1: So the thing which is going in the fire is for dharma and those which is just falling out is going to adharma. So that both sons can fulfill that.
0: हमारा प्रयास ये रहे कि हम अंदर ही डालें जिससे धर्म की वृद्धि हो और हमारे गुरुजन जो स्वस्थ हैं
1: and we should try that it goes more inside but that it goes for dharma and less for adharma but if it goes out it's okay
0: ठीक है आगे प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे ओम गुरुवो स्वाहा गणेशाय स्वाहा
1: स्वाहा
0: एक कटोरी में जल लेकर के सामने रख लीजिए आप चारों दिशा थोड़ा थोड़ा वहीं से बैठे बैठे द्रव्य दक्षिणा इसलिए हम चढ़ाते हैं कदाचित जैसे जो हम सामग्री लेकर के आते हैं उसमें जो दोष हो अथवा उसके अतिरिक्त जो भगवान को प्रिय हो तो वह उससे उसकी पूर्ति हो जाती है

0: वी हैव इट बट वी डोंट वांट
1: तो उसके हिसाब से हम ये भी देवताओं को प्रणाम करके थोड़ा सा अक्षत लेकर के जो भी आपने देवी देवताओं को बुलाया है उनसे प्रार्थना करने हैं, आपके आवाहन पूजन में हमसे जो गलती हुई हो, जो कम अथवा ज्यादा जो सामग्री चढ़ गई हो, उन्हें क्षमा करके हमारे जो गुरु जी हैं उनको स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें, और हमारे जो भी विश्व में जो भी हमारे शिष्य इत्यादि हैं उनको उत्तर उत्तर वृद्धि देने की कृपा करें, इनको सबको समझा दीजिए।
0: Now, whatever we chanted or if we did any mistakes, we will ask for forgiveness from Gurudev, from Fire God, from Shivji, from everyone, and we will pray that all the world is remaining in peace and unity, good health for Swamiji, and whichever wish you ask for in your inner minds when taking the Sankalpa, that they come true, we are going to pray for that. Papoham papa karma ham papatma papatma papa sambhavam trayimam parvati natha sarva papa haro hara mantra hinam kriya hinam bhakti hinam sureshwaram yat pujita maya deva paripurnam tadastame aparanam na janami tavarjanam pujam chaiva na janami kshamyatam parameshwaram
1: yantu deva gana sarve pujam adaya namakim यत्र गच्छ उदासना यत्र ब्रह्मादयः सर्वे तत्र गच्छ उदासना पूर्वस्व सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः।

0: जय
1: जय
0: हो।
1: ओम श्री गुरु नानक की
0: जय
1: जय।
0: हो।
1: ओम विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वर नंद चिउरे वाकी
0: जय हो।
1: श्रीदेव महादेव की।

0: Come a little back. Thoda. Mere bappi se aao. Yahan mere paas mein. Ab dono ek saath saath reho beta. Aur mask nikal do. Sight karo. Slow. Thank you.
1: श्री दीप नारायण भगवान की जय, देवी श्रीमादेव की जय।
0: थोड़ा दूर है।
1: हिंदी धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवन जी भगवान की जय। श्री 1008 विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी पुरी जी गुरुदेव की जय। Without Guru, we cannot know Brahma, Vishnu, Mahesh. Actually, Guru is not only Brahma, Vishnu, Mahesh. Guru is also Par Brahma, Parameshwar. Om Guru.

0: पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित परिभज काचार्य ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्री श्री श्री 1008 विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंद जी पुरी जी गुरुदेव की जय।
1: देवपुरी समादेव
0: की जय।
1: माधवानंद जी भगवान
0: की जय।
1: दीप नारायण भगवान
0: की जय।
1: अलकपुरी जी महादेव
0: की जय।
1: भारत माता की
0: जय।
1: जय वाह।

0: नारायण हम सब दास प्रभु शरण परायणम सिक्स सो कंटिन्यू फाइव टाइम्स मोर
1: ešte 5 krát.